देश विदेशी रे सारे हरे दिन दी सार संभाली तिन सज्जना मुंद नैन परेंदी

అకాల మూర్త అయోని సంగర్ ప్రసాద్ యప్ ఆత్ సచ్ యుగాత్ సచ్ హేవి సచ్ నానక్ కోసివీ సచ్ చక్ర కేన అర్వర్ణ జాత్ హర్ పాత్ నిహిన్లే సూత్రంగ రీక్షీ భూకాన సత్య अचल मूर्तन भव प्रकाश अमित पूज कहिज पूज चिंदनेन्द्रान शाहो शाहान गणिज फिर भवन में ही सुर नारायासुर नीत नीत मंडन कह सब सर्वनाम कथे कवन कर्म नाम वर्ण समत सत्पुरे आयु शरण तुहारी मिले सुख नाम हर शोभा चिंता लाए हमारी और न सूझे दूजी ठार आर प्रयु तो द्वारी लिखा छोड़िया लिखा छूट है हम निर्गुण ले हो वारी सर्वक्षण सदा मेरवाना सब नामी आवारी नानक दास संत पाछा प्रयु राख लियु ए बारी सतगुर हुई दयाल ता श्रद्धा पूरी है सतगुर हुई दयाल ना कम हो चूरिया सतगुर हुई दयाल ता दुख न जानिया सतगुर हुई दयाल ता हर रंग मानिया सतगुर हुई दयाल ता जमका डर के हा सतगुरु हुई दयाल ता सदही सुख दयाल सतगुरु हुई दयाल ता नौ निज पाईया

0: अपने भगत करें प्रतपाला, अदरा तेरी हड़ियाई नित नानक नाम तिहाई, अदरा तेरी हड़ियाई नित नानक नाम तिहाई।
1: तेरी भगत।

देहन फिर ओ परिपूर्ण परमात्मा सदा उना जपन वालियां दे अंग संग है। ए शब्द गुरु अर्जन दे पातशाह दा उचारण कीता होया जिदे विच आप कहंदे हन, हे प्रभु हर का नाम हृदय नित ध्यान। हे प्रभु मैं तेरा नाम सदा हृदय विच वसावा, हर का नाम हृदय नित ध्यानी, सदा तेरा नाम मैं हृदय विच जपा, मन करके जपा। हर का नाम हृदय नित ध्यानी, संगी साथी सगल तराई। ए नाम जपन दे सदके जिना जिना ने भी मेरे नाल बैठ के तेरा सिमरन कीता है, नाम जपे है और जपणगे, हे प्रभु कृपा करी उन्हां सारियां नूं ही अपने नाम दे सदके तार लई। हर का नाम हृदय नित ध्याई, संगी साथी सगल तराई। ते जो नाम जपदे हन गुरु अर्जन दे पातशाह कहंदे न, फिर उन्हां दे अंग संग हुंदा है गुरु। गुरु मेरे संग सदा है नाले, सिमर सिमर तिस सदा संभाले। जो सिमरनगे परमेश्वर दा नाम, साई दा नाम, आख्या सदा गुरु उना दे अंग संग है। गुरु मेरे संग सदा है नाले, सिमर सिमर तिस सदा संभाले। और जद नाम जपेगा प्राणी, नाम जप के उसकी आत्मा परमेश्वर दे चरणा नाल जदों इक मिक हो जाएगी। बाबा आनंद सिंह जी महाराज क्या करदे सन, जदों जीव नाम जपदा है फिर नाम जपन वाला और नामी विच फर्क नहीं रह जांदा। हर हर जन दो इक हैं, बिप विचार किछ नाहीं, जल ते उपज तरंग जियो, जल ही बिखे समाए। नाम जपन वाली आत्मा परमेश्वर दे एडे नेड़े हो जांदी है कि फिर जदों संसार दे दुख आउंदे हन तां उस आत्मा नूं ओ दुख दुखी नहीं कर सकदे। दुखां विच भी रह के उह सदा परमात्मा दा शुकराना करदा है, पाणी नूं मंदा है ते की कहिंदा है, तेरा किया मीठा लागे। हे प्रभु तूं सुख विच रखिया है, मैनूं दुख विच रखिया है, ए तेरा ही हुक्म है, तेरा ही पाणा है। तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदार्थ नानक मांगे। गुरु अर्जन देव पातशाह कहंदे ने, मैं तां हे प्रभु सदा तेरे चरणा विच एही आराधना करांगा कि तू मैनू अपना नाम बख्शे, मैं तेरा सिमरन करां, अमृत वेले उठ के तेरी भगती करां। और जो परमात्मा दी भगती करदे हन गुरु अर्जन देव पातशाह कहंदे ने, गुरु सदा उन्हां दे अंग संग है।

जिस वेले आख्या गुरु अर्जुन देव ने, मियां मीर जितने तन पर पड़ेंगे छाले उतने सिख होंगे सिद्धक वाले, उतने ही सिख सिद्धक वाले होंगे। जे गुरु ने पाना नहीं मनिया तो सिखा ने फिर पाना क्या मनना है। ते फिर जिस वेले चंदू आया अजे भी मन नहीं भरिया तो साहब जी कहन लगे चंदू साडा मन करदा है असी इशनान करिए। तीन दिन हो गए हैं चौकड़ा मार के बैठे हैं, साडे प्यार वाले जेडे नाल आए सन उन्होंने बुलाओ। तो प्यार वाले गुरु अर्जन देव पातशाह नु प्यार नाल इस वेले रावी दे किनारे ते लियाए। साहब जी कहन लगे हुण साडा गुरु नानक दे पास जाण दा समा आ गया, असी जपजी साहब पढ़ांगे ते जपजी साहब दा जिस वेले समाप्ति करांगे अपना शरीर अलोप कर लांगे रावी विच ते तुसी वापस हरमंदर साहब अमृतसर चले जाना। ते ए सब नु आखना के गुरु अर्जन जी ने उस अकाल पुरख दे पाणी विच रह के उसके हुक्म विच अपना सिर नवाए। ते जप जी साहब जिस वेले गुरु अर्जन देव जी ने आरंभी ते जिस वेले जप जी साहब दा भोग पाया जिनी नाम ते आया गए मुशक्कत काल नानक दे मुख उजले गेती छुट्टी नाल रावी विच अपना शरीर अलोप कर लिया। ते मानो अजे भी रावी दी लहरां विचों ए आवाज गुरु अर्जन देव दी आ रही।

प्यारे गुरुदेव जी, सच्चे पातशाह धन धन सतगुरु साहेब श्री गुरु नानक देव जी महाराज, सानू अपने ना पवित्र वचना के द्वारा ये दस रहे हैं कि साड़ी जीवन की यात्रा जो है वो सफल क्यों नहीं हो रही, उस दे विच ऑब्स्टैकल्स की हैं। साडे जीवन की जो विधि है वो किस किस्म की है, तो आओ गुरु बाबा जी के चरणों के विचों पूछिए, महाराज असी अपने जीवन की यात्रा किवें सफल कर सकते हैं, असी अपनी जिंदगी नूं किवें रंगीन बना सकते हैं। तो बाबा जी आखते हैं कि तुहानूं तीन चीजा मिलियां, नंबर एक बॉडी माइंड एंड सोल, जो उस दिन शब्द दे विच दास ने अर्ज कीती सी। तो सब तो पहला ओ तन नूं, शरीर नूं जो पॉइंट आउट करते हैं, कहते हैं असी देखते हाँ कि यह जो शरीर सी एक वहीकल सी, एक साधन सी, जिस साधन दे नाल, जिस वहीकल दे नाल तुसी अपनी यात्रा जो है उसनू तय करना सी, एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बॉडी, जड़ी अजीवात्मा इस दे विच ड्राइवर की तरह बैठा हो। बाबा जी आखते हैं किसी भी यात्रा ते सक्सेसफुली पहुंचने दे वास्ते जो उसका वहीकल है उसका परफेक्ट कंडीशन दे विच होना एब्सोल्यूटली लाजमी है। जे वहीकल बिगड़िया होया है, जे वहीकल रिलायबल नहीं है, तो वो यात्रा जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकती। महाराज जी साडे वहीकल नु की होया, वट इज रोंग विद अवर वहीकल? वो आखते हैं इत्थे बस नहीं, जदों किसे ने किसे वहीकल दे विच अपनी यात्रा करनी होवे तो उसनू अपने वहीकल दा ए टू जी पूरा पता होना चाहिए, पूरा पता होना चाहिए। तो गुरु साहब देखते हैं कि सानू अपना ये जो शरीर वहीकल है इसका कुछ भी पता नहीं, बस असी जन्म ले लिया है, शरीर सानू मिल गया है, भुख लगती असी खा लें, नींद आती असी सौ लें, प्यास लगती असी पी लें, बोल चाल लें, होर जो शरीर के फंक्शन हैं असी वो कर लें, पर सानू इस वहीकल का कोई पता नहीं है एक ही चीज है, एक ही चीज। तुसी अपनी यात्रा किवें सक्सेसफुली अकम्पलिश करो जदों तुहानू अपने वहीकल के मुतलिक ही कोई पता नहीं, एक की वस्तु की है। नंबर एक दूसरी गल ए है जो साडे जीवन दे विच परमारथ रूहानियत आत्मिकता स्पिरिचुअलिटी पीस ऑफ माइंड स्टिलनेस ऑफ माइंड कामनेस ऑफ माइंड इनर जॉय एंड
ਇਨਰ ਬਲਿਸ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿੰਦੀ, ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੋਵਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸੁਣੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ

तो ड्राइवर जो अंदरला है वो बहुत कमजोर है, वो काया का गुलाम हो चुका है, काया ने ड्राइवर नू टालिया है, काया जो मंगदी है वो उसनु प्रोवाइड करी जा रहा है। काया कमली हंस आना तो जिड़ा हंस है जिड़ी अंदरली आत्मक जोत है वो कहते हले बहुत मध्यम है, वो न्याणा है, वो हाले उस बुजुर्गी नहीं आई क्योंकि उसने बुजुर्गों की महापुरुखों की विचार अपने अंदर ग्रहण नहीं की, ना सुनी ना समझी ना विचारी, तो उस दे अंदर बुजुर्गी नहीं आई। वो आना है जिधर काया लाई फिर है उसके पास वो चलिया फिर है, सारी ह्यूमन सोसायटी जी है वह काया के पिछे चल रही है, सारी ह्यूमन सोसायटी काया ही प्लीज करन दे उते लगी पई है। काया कमली हंस आना एक पंक्ति छोर आखते हैं महाराज जी, कहते हैं

आस्था बंदी मूर्ख दे, ए दे बड़ी मूर्ख है, अगां तो अगां दियां आसां बंदी जा रही है, पर इस देही नूं यह नहीं दिसदा कि मैं बड़े लंबे समय दे फ्यूचर दे वास्ते अपनियां जो आसामां बंदी हां, पर यह नहीं सोचती कि मैं रहना कदों तक है, कि डे बाय डे मैं ताकतवर होना है कमजोर होना है, डे बाय डे मेरी एज घटनी है या बदनी है, डे बाय डे मेरा एनर्जी लेवल बदना है या घटना है। इस करके एक कंसर्न ही नहीं है, इसका जीव आत्मा इतना न्याणा है कि वह सोचता नहीं कि दिस इज गोइंग टू बिकम वीकर एंड वीकर एंड वीकर, इस दे वास्ते टाइम सिर इस तो मैं अपना कम लवा, और सगों इस दे नाल रलिया होया है अते काया ये जड़ी बड़ी मूर्ख है। तो यह साड़ी सत्संग की हालत है कि इंद्रियां सबल हैं, असी इन्हों वर्तना सी पर यह हूं सानू वर्त रही हैं, असी इन्हों वर्तना सी पर वर्त यह रही हैं सानू। तो कितनी ट्रेजडी की गल है, कितने अफसोस की गल है, महाराज जी ने यह इंद्रियां सानू दित्तियां सन कि इन्हों दे नाल असी अपना परमार्थ की जो यात्रा है वह सिद्ध करनी है, सफल करनी है। और फिर महाराज जी पूछते हैं भाई ये शरीरा मेरिया इस जग में आए कि क्या तुद कर्म कमाया, कि तू की कीता है, तू तो सारे दे सारे अपने इस इंस्ट्रूमेंट को ही डैमेज कर लिया है, पूंडी चाल कहते अखीर जाके बिरध उम्र दे विच जाके तेरी चाल भी नहीं सुनी रह जाती, डगमगा के तुरदा है, सोटी दे नाल तुरदा है, लंगड़ा के तुरदा है, पूंडी चाल यानी चाल ही अगली हो जाती, चरण कर खिसरे हाथ अते पैर ओ खिसक गए हैं, वह कंबदे हैं, तुचा देह कुमलानी जड़ी देही दी तुचा है, जड़ी स्किन है, चमड़ी है, ये ते कुमला गई है, ते झुरड़ियां पै गई हैं, फिर असी प्लास्टिक सर्जरीज वगैरह करा के उसनों असी लिफ्ट देने हैं, अपलिफ्ट कराने हैं, तुचा देह कुमलानी नेत्री धुंद, उन्हां अखियां ने जिन्होंने ज्ञान पढ़ना सी, साधुआं दे दर्शन करने सन, वो कुछ होर कर दियां रहियां, गुरमुखां दे दीदार नहीं किते, गुरबाणी दे दीदार नहीं किते, गुरबाणी पढ़न दा मौका नहीं मिलिया, गुरबाणी पढ़न दा इंटरेस्ट नहीं बनिया, सतपुरखां दे विचार पढ़न दा इसने इस्तेमाल नहीं लिया, हुण कहिंदे नेत्री धुंद, नेत्रां दे विच भी धुंद आ गई है, फॉग आ गई है, क्लीयर दिसदा नहीं, कर्ण पै बहरे हुण कन्नां तों भी घट सुणदा है, कन्न मिले सन सत्संग सुनन लई, रब की गल सुन ली, उस पाथ से चलन दे वास्ते वध तो वध इन्फॉर्मेशन सुन दे वास्ते, पर कहते हैं हुण वह भी समा लंघ गया, कर्ण पै बहरे मनमुख नाम ना जानी, इस मनमुख ने नाम रूप वस्तु नू कहते जिस दे नाल इसने थ्रिल्ड होना सी फुलफिल्ड।

मानस जन्म दुलंब है, होए ना बारंबार, जो वन फल पाके पोहिंगरे बहर न लागे डार। जिस तरह दरख्त दे नालों टुट के फल नीचे गिर जाए ते दोबारा ओ टाणी दे नाल नहीं लगदा, एक दफा ए दुर्लभ तन जो है जदों गिर जाएगा धरती उते, फिर इस दे वापस उठन दी कोई उम्मीद, कोई आशा, कोई चांस बिल्कुल नहीं है। ए दुर्लभ। सो वी आर कैरिंग समथिंग विच इज सो इनवैल्यूएबल। हाउ वेल्थी वी आर एंड हाउ मच थैंकफुल वी आर, वी नीड टू आस्क दिस टू अवर सेल्फ। दूसरा नुक्ता, नंबर एक दुर्लभ, दूसरा नुक्ता, गुरु बाबा जी आखते हैं ये मंदिर है। कदे असी सोचा कि मैं ही मंदिर हां? आप जी ने कितनी दफा ये विचारिया सोचा होएगा कि यही मंदिर है। बाबा जी की बाणी दसदी है कि मंदिर की है। जो सोचते विचारते जानते हैं ऐसे गुरमुखां नूं तां मैं नमस्कार करदा हां, पर असी बाणी चों तन दे प्रति, बॉडी दे प्रति ही इनफॉरमेशन नहीं लई, असी कई दफा बाहरों इनफॉरमेशन इकट्ठी करते फिरते हां, जबकि साडे गुरु साहिबान ने इतना भरपूर ज्ञान बख्शिया है सिर्फ बॉडी दे मुतलक ही। अज इत्थे 10 दिन कीर्तन करिए इस चीज दे उत्ते भी, सिर्फ इस चीज दे उत्ते ही, तां भी ओ इनफॉरमेशन जो है ओ कंप्लीट नहीं हो सकेगी कि बाबा जी ने तन दे उत्ते सानू की कुछ दस्या है कि तन की चीज है, पर असी उसनू किसे होर ही फैशन च पढ़ते हैं। सोच विचार के पढ़ना, ज्ञान नाल पढ़ना ओ होर चीज है। आओ दूसरा नुक्ता, दूसरा पॉइंट महाराज जी दसते हैं ये मंदिर है, टेंपल ऑफ गॉड, दिस इज द रियल टेंपल, इस तो बिना होर कोई टेंपल नहीं। बाणी च किते नहीं आखी, कहिंदे ए मंदिर है, बाणी दा प्रमाण सुनो, कहिंदे हन

स्पष्ट है नुक्ता, हर मंदिर ये शरीर है, ये शरीर हरि का मंदिर है, फिर तो इसमें भी नमस्कार करनी बनती है, फिर तो ये पूजन योग है। जे ये हरि का मंदिर है, हर मंदिर ये शरीर है, काया महल मंदिर घर हर का हरि अकाल पुरख वाहिगुरु जी का एक घर है, अकाल पुरख वाहिगुरु के निवास का स्थान है। तो फिर सानू इस मंदिर नू मंदिर की तरह रखना चाहिए है। मंदिर के अंदर की हुंदा है, मंदिर के अंदर शांति हुंदी, मंदिर के अंदर पूजा हुंदी है, मंदिर के अंदर कीर्ति हुंदी है, मंदिर के अंदर रेवरेंस हुंदी है। मंदिर के अंदर पवित्रता ही हुंदी है, पवित्रता ही हुंदी है। मंदिर के अंदर रब्बी संगीत हुंदा है, डिवाइन म्यूजिक हुंदा है, कीर्तन हुंदा है। मंदिर के अंदर संगत हुंदी है, साथ संगत हुंदी है। अगर ए मंदिर है तो फिर इस मंदिर का जो एनवायरमेंट है वो सारा मंदिर वर्गा ही होना चाहिए है। अगर ए मंदिर है तो इसके अंदर शांति होनी चाहिए है, टिकाव होना चाहिए है, इसके अंदर हर वक्त पूजा आराधना होनी चाहिए है, इस दे अंदर सत्संग होना चाहिए है। मंदिर च प्रभु जी का निवास हुंदा है, गुरुदेव हुंदे हन, इस मंदिर दे विच भी हर वेले गुरुदेव की प्रेजेंस महसूस होनी चाहिए है। मंदिर दी असी कदे बेअदबी नहीं करते, उपर असी जोड़ा पा के नहीं आ सकते क्योंकि बेअदबी हो जाएगी, फिर इस मंदिर की भी बेअदबी नहीं होनी चाहिए क्योंकि मंदिर की बेअदबी बड़ा वड्डा गुनाह है। इस मंदिर भी जो कि इट्टा नाल लकड़ियां नाल पत्थरां नाल बनया है, असी कितने कंसर्न हां कि बेअदबी ना होवे, पर इस मंदिर की बेअदबी जितनी मर्जी हो जाए उस दे वास्ते असी कदे कंसर्न नहीं हां। सर्टन थिंग्स तुहानू पता है कि असी इस मंदिर च नहीं लिया सकते, खाण वालियां पीण वालियां इस मंदिर च असी नहीं लिया सकते, ना असी इत्थे कुक कर सकते, ना बना सकते हां, ना वरता सकते। अगर लै आइए बनाइए खाइए पीए तो इतने झगड़ा हो जाएगा, पर वो वस्तुआं इस मंदिर च असी किवें लै जाने हैं जिसनू महाराजी मंदिर आखते हैं। इस मंदिर च असी वो तमाम चीजा ता ही ले जाने हैं कि सानू ये ज्ञान ही नहीं मिलिया गुरु बाबा जी की बाणी तो हाले तक कि असल मंदिर इंसान आ तेरा शरीर है, इस मंदिर के अंदर उ कुछ ले जा जो जान दे योग है। इस मंदिर दे विच कोई भी ऐसी वस्तु पाई जो योग नहीं है, बहुत वड्डा गुनाह अते बहुत वड्डा पाप हो जाएगा। इस मंदिर नू पवित्र तो वध के पवित्र रख, इस मंदिर दे अंदर दा वातावरण जो है वो पवित्रताई वाला रख। पर साडे अंदर की है, वैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महा लोभ त्रोह याहू जुगत बिहाने कई जन्म नानक राख ले हो अपन कर कर्म। असी तो ये कुछ पाई बैठे हाँ तो मंदिर की कितनी वड्डी असी बेअदबी कर रहे हैं। तन दे मतलब जो कि एक इंस्ट्रूमेंट है, व्हीकल है, पर इस

दुर्लभ जन्म चिरंकाल पायो जात्यो कौटी बदला का दूरी को गाहक आयो लाद्यों का निर्भ जिबा आयो लाभ लपन के ताई आयो लाभ लपन के ताई मोहन ठगावी क्यों पुरज पहा मोहन ठगावी क्यों

क्रोध नाल प्यार करते हैं। हजूर फरमांदे झूठ बोलना मुर्दार खाना चंगा लगता है, किसे नाल त्रोह करना ए इनू मिठे लगते ने। हजूर कहंदे ने ऐ वाहगुरु इन्हां नू रख लै इन्हां औगणा तों।

रोज अरदास करदा सी है परमात्मा आओ मेरे हृदय जे थड़े ते बैठो बेनतियां करदा रहा। एक दिन परमात्मा ने बेनती सुन ली आ गए कहन लगे खोल भाई बुआ तेरे हृदय दे थड़े ते बैठी जां बुआ खोलिया इस हृदय दे सिंघासन ते बहुत भीड़ कठी हुई हुई किधरे ईरखा बैठी है किधरे क्रोध बैठे किधरे होमे किधरे लोग सारा थड़ा भरिया होया। परमात्मा ने पूछा बिठाएगा किथे थड़ा तो तेरा खाली नहीं एक वस्तु नू कढ़ेगा तां दूजी नू पाएगा मैनू बिठाण लई किथे थां थड़ा ते सारा भर के रखिया होया। कह लगा लै इह तां गल भुली गई सी आया क्रोध दी बां फड़ी बाहर छड़ आया फिर आके काम नू बाहों फड़िया गलों फड़ के बाहर छड़ आया जामुड़ वेख दे क्रोध उथे ही बैठे मोह दी बां फड़ दे बाहर छड़ आउंदे फिर अहंकार नू बाहर छड़न आउंदे फिर वेख दे मोह उथे ही खड़े ए विचारा बार अंदर सारिया नू कढ़दा रहा एक एक नू कह लगा निकलो मैं परमात्मा आ गया उनू बिठाने ओ कह लगे ओ परमात्मा ते तेरा अज आया असी तेरे कई जन्मा जन्मा दे साथी इनू नहीं छड़ सकते। परमात्मा ने आख्या चंगा तू इन्हां नू बाहर कढ़ फिर समा होवेगा आवांगे आके बैठांगे तेरा थड़ा खाली नहीं हुण जदों थड़ा खाली होया फिर आवांगे इंतजार करके परमात्मा वापस चला गया। हजूर कहंदे ने हुण समा है तौबा कर इन्हां गुनाहां तों अते वाहगुरु दे अगे कर अरदास

आओ भाई बंदी छोड़ नू अरदास की पीसीना। आशा सी कैद हो मेर कर सानू इस कैद तो बंद खलासी कर अपना पल्ला पकड़ा। गुरु पंचम पातशाह अरदास कर दे पंच दूत मूड पर ठा।

जब में गहे विपरन की रीत मैं ना करूं इनकी प्रती। जदू ए खालसा पंडतां दियां रीतां ते तुर पिया भाव अपने असूलां तो जदों ए पिछे हट गया ते फिर ए दे विच मेरा तेज नहीं रहेगा, फिर इन्हां दा राह वखरा ते मेरा राह वखरा होगा। मैं खालसे दे विच उदों तक हां जदों तक खालसा मेरे असूलां ते रहेगा, ते जे इन्हां दा असूल कोई नहीं ते फिर ए मेरे कोई नहीं। आखो सतनाम श्री, क्योंकि गुरु साहिब जी जो कहिंदे हन पहला ओ ते फिर रहतनामे संसार दे विच। पीर पैगंबर ते बड़े हुए, पीर पीर रहे, सेवक सेवक, भगवान भगवान रहे, पुजारी पुजारी, पर गुरु नानक दे कार गुरु चेले बन गए ते चेले गुरु बन गए। आखो सतनाम श्री वाहे। और इत्थों तक क्या

दिग्विजय ने पूछा, महाराज तुसी कहंदे हो सब कुछ खालसा है, जे सारा कुछ ही खालसा हो गया ते फिर तुसी ते गुरु साहब जी।

इतनी बढ़ियाई दी थी और इतों तक चले गए। कहने लगे खालसा मेरी जान की जान। और इस तू पहली पंक्ति खालसा मेरो पिंड प्राण, खालसा मेरी जान की जान। पिंड कहंदे ने शरीर नू, खालसा मेरा शरीर है, खालसा मेरो पिंड प्राण, और खालसा मेरे प्राण है, और खालसा मेरी जान है, खालसा मेरा मां बाप है, खालसा मेरे भैन भरा है, खालसा मेरे रिश्तेदार, और खालसा मेरा सज्जन मित्र है। और इतों तक कह देता गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का सारा इतिहास पढ़िए, उन्होंने किधरे कसम ने खाधी। पर जब खालसे की गल आई तो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने खालसे वास्ते एक कसम खाधी। की कहते हैं, पार ब्रह्म गुरु नानक साखी। मैं पार ब्रह्म गुरु नानक नु साखी रूप जान के कहना के खालसे विच अकाल पुरख विच ते मेरे विच कोई फर्क नहीं।

बाजत बसंत अर पैरव हिंडोल राग ये 11 रागां दा गुलदस्ता 11 राग इकट्ठे आप जी ने शरण कीते हन जो कि गायन विच ये बहुत कठिन हन तो सत आप संगत दी आशीर्वाद सदका ही मेहनत करके इहो जिहियां चीजां जो गायन कीतियां जांदियां हन तो सतसंग जी ये स्वरां दा मिलाप है जो सत स्वरां नूं गुरुआ ने गुरु नानक साहब जी ने गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने सारे गुरु साहबान ने सत सुरां दे विच गाया है तो शरंदे दे नाल गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने इन्हों सत सुरां विच कीर्तन किया सारे गावां पा धानी सा ये सत स्वर तो इन्हों सुरां नूं गुणी जना ने विद्वान लोगों ने ऋषिया ने मुनिया ने पीरां पैगंबरां ने सारे ने इन्हों सत सुरां नूं गाया। एक विद्वान ने बहुत ही सुंदर लिखा है ये सत सुरां सानू कित्थों मिलियां हन पंक्षियों की आवाज तो सत सुरां सानू प्राप्त हुई सब तो पहला जदों विद्वाना ने सात सुर लभ्या है तो सात सुर कित्थों मिलिया उन्हां कहे मोर हूं की बाणी को सुधार खर जबान दियो जद मोर बोलिया जंगल दे विच तो उन्होंने मोर की आवाज नू सात सुर मन लिया सा बन दिता मोर हूं की बाणी को सुधार खर जबान दियो चातरक की आवाज से रिखब सुर भरी है जदों चातरक पपिया बोलिया तो रे सुर लग्या तो विद्वाना ने रे बन लिया ये रे बन गई सा रे चातरक की आवाज से रिखब सुर भरी है अजा की आवाज से गंधार का उचार कियो अजा मैंने भेड़ है जदों भेड़ बोलती तो गा सुर लगता है अजा की आवाज से गंधार का उचार कियो कूंज के कुरलाप से मध्यम सुर भरी है जदों कूंज करलाउंदी है तो मध्यम सुर लगता है मान सुर लगता है कूंज के कुरलाप से मध्यम सुर भरी है कोयल हूं की कूक हूं ते पंचम बनायो विद जदों अंब दी डाली ते बैठ के कोयल कूकदी है ते फिर पंचम सुर लगता है कोयल हूं की कूक हूं ते पंचम बनायो विद दादर की आवाज से दैवत सुर उचरी है दादर मैंने डड्डू जदों डड्डू बोलता है ते दाल सुर लगता है दादर की आवाज से दैवत सुर उचरी है माते गज राजन की रंगून से निषाद लीनो गजराज हाथी रंगून मैंने चीख जदों जंगल दे च हाथी चीखदा है ते नी सुर लगदी है माते गज राजन की रंगून से निषाद लीनो इतनी निर्वाण जान सातों सुर कही है। विद्वाना ने यह सत सुरां इस तरह कही हैं तो सतसंग जी ये संगीत जो है इथों के बच्चे सारे बड़ा कीर्तन करते हैं कीर्तन सीखते हैं तो आप जी का सारे का फर्ज है इत्थे जो कीर्तन की लहर परंपरा चली है बहुत ही आनंद आता है जो बच्चे कीर्तन सीखते हैं क्लासीकल कीर्तन दे मन जोड़ते हैं ये तुहाडा बहुत वड्डा उपराला है माता पिता का जो बच्चों कीर्तन दे नाल जोड़ रहे आओ सिख संगतां वालों गुरु कलगीधर पातशाह जी के अमृत के बारे रहत के बारे हुक्म होया सी कि जो